उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया देवी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

उजाला रेडियो डे अब प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफ, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: हे आत्मतुल्य श्रोतागण, इस संसार की उत्पत्ति के कारण स्वरूप नटराज शिव शंकर भगवान की अपार करुणा हम दीन जनों पर बरसे और बरसती रहे, इस शुभकामना के साथ आज हम सब शिव स्तुति का प्रारंभ करें।

एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ माँ पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए आ जाता है। भोलेनाथ समझ गए कि मेरा ही वरदान मुझ पर आजमाना चाहता है। भोलेनाथ अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। भस्मासुर गुफा के द्वार पर बैठ जाते हैं। ये सब लीला नारायण देख रहे थे। भगवान विष्णु नारायण तुरंत मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं और मग्न होकर भस्मासुर नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं मेरे भोले बाबा।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेड पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

और राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पठान एंड उजाला रेडियो। तो जाने है

0: D. De storing zou nauwelijks vertraging hebben veroorzaakt. Margaret, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moet het drinkwater 3 minuten koken. Dit nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है
2: होठों पे सच्चाई रहती है
3: मुकेश जो आप सबके प्रिय गायक थे मेरे बड़े भैया थे मुकेश भैया एक महान कलाकार थे एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

0: हम यहाँ तुम यहाँ, कुमार सानू की आवाज, फिल्म जख्म का गीत।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt INN.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। गीत आप सुने तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है।

कोई जाने ना कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। गीत आप सुने मुकेश जी की आवाज में और फिल्म अनोखी रात से निकाले गए।

हे सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। यहाँ तक था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में हम फिर मिलेंगे उजाला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हाय रे धुविनिया, तुझको क्या बेधल, जरा मुझको बता।
2: मरी जाइए धो

0: संगीत के रंग, उजाला रेडियो पर
1: पुरानी यादों के साथ
0: और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

तुम सबसे हंसी हो, तुम सबसे जवां हो। महेंद्र कपूर जी के साथ आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है। इसी फिल्म से निकाला हुआ एक और गीत पेश है, और इस बार गायक होंगे मोहम्मद रफी साहब।

तुम्हारी मुलाकात से मुझको ये पता भी चला कि मेरे भी सीने में है दिल एक धड़कता हुआ। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है और ये उजाला रेडियो है।

Live vanuit de Hoogstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

किसी को या ये तो लगता है कि तुम हो भूपिंदर सिंह की आवाज में। आप सुने एल्बम शबनम से और ये है यू आर उजाला रेडियो।

0: आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म तीसरी मंजिल के गीत से उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है?
2: है
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: है,
1: तुमको मुझसे प्यार है।
2: लता जी एंड मोहम्मद रफी से आप सुने द फिल्म देखा जाए, हाँ फिल्म आराधना का गीत। एंड यू लुस्टेड नार उजाला रेडियो ओंस टेलीफोन नंबर टाइडेंस कंटोर यूरन इज 020-409-0807 एंड यू कुंट नैचुरलिक अल्टाइड एन मेल्टे स्टूरन नार इन्फो@ujala.nl

हम से सनम क्या पर्दा, इसलिए बाहों में चलिया। फिल्म अनामिका का गीत आप सुने और इसके बाद फिल्म लालकार की ओर हम चलते हैं।

मेरे साथिया कि कितना मुझसे प्यार है फिल्म ललकार, मोहम्मद रफी और लता जी से आप सुने नार उजाला रेडियो अमदा चायत फ्रिशिल होर्ट या तो सुन। छुप गए सारे नजारे

और गीतों के लिखने वाले जो होते हैं ना, उनकी तारीफ इसमें भी गाया गया है कि तेरी चुनरी लहराए और बरसात हो गई। वाह, फिल्म दो रास्ते का गीत आप सुने। प्रोग्राम जारी है।

दिल ढूंढता है, भूपिंदर सिंह एंड लता जी से आप सुने फिल्म मौसम का गीत। और मैं हूं उजाला रेडियो का, और उजाला रेडियो है आपका।

फजा भी है जवा जवा, सलमा आगा की आवाज़, फिल्म निकाह का गीत आप सुने। विल टू कॉन्टैक्ट ऑफ नेमन मैट उजाला रेडियो, दान कान दैट ऑफ ट्वी मनीरन। यू कैन बेलन 020-409-0807, tijdens kantooruren 020-409-0807. En u kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@ujala.nl.

कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। फिल्म आमने सामने लता जी के साथ एक बार फिर आप सुने मोहम्मद रफी साहब को उजाला रेडियो पर। हाँ, हम ये कहना चाहते थे कि उजाला रेडियो पर हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे मुकेश जी। या वेल, पेश है फिल्म संगम का गीत।

नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीद गुलजार और आप सुन रहे हैं यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ मिले जुले संगीत।

yes, sir! It's the rocking and most sensational leader in broadcasting, UR Kapayham. Tu jaane hai to. मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज दिन का पैगाम में। आप हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन अर्ज है स्टूडियो से।

0: रेखा और रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना सोना सब दुश्वार हो गया। मैं आदमी था काम का, अब बेकार हो गया।
1: दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का, बेकार हो गया।
0: सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सिलेक्शन सुने हैं।

राहुल देव बर्मन के साथ पर सिलेक्शन आप सुनेंगे द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज में, पिया तू अब तो आ जाना, तू कहाँ है आ जाना।

संगीतकार आरडी बर्मन, आरडी बर्मन और आशा जी की आवाज। पिया तू अब तो आ जा, पिया तो ना आयो अब दिन ढल गए। आइए सुनते हैं देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए।

तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। देवाशीष दास गुप्ता की आवाज आपने भी उजाला रेडियो के जरिए सुने हैं। मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी है, आप खुश रहे और सलामत रहे। अगर आप दुखित या तो बीमार या लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते ताकत और तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है।

सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। आइए मिलकर सुनते हैं शहीद वाजिद हुसैन को।

मिले जुले संगीत में हम आपको भी कुछ लोकल सिलेक्शन सुना रहे हैं और ऐसे में आपने भी सुने हैं जुबाड़ के माध्यम से शहीद वाजिद हुसैन की आवाज में कि सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। फोन का नंबर यूआर का एडमिनिस्ट्रेशन पर है 020-409-0807। इसी फोन का नंबर पर आप डायल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार या जो भी रेडियो के कार्य के वास्ते 020-409-0807।

फिल्म संगम का गाया हुआ रिमिक्स वर्जन आपने भी सुने हैं कि मैं क्या करूं राम, मैं क्या करूं राम, मुझे तो बुढ़ा मिल गया। इट्स द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग, यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 02409-0807। आप हमें जिस हालात में भी सुन रहे हैं, चाहे लौट के सुन रहे हैं, सुनते रहना, सुनते ही जाना।

Lotella. Oh, dit is slecht voor mijn oren, man. आपको मिले जुले संगीत हम सुना रहे हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार और ऐसे में एक बार फिर से सुरों का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम 1920, गीत का बोल नाराज़गी ये आपकी, ये नाराज़गी ये आपकी हमें जीने नहीं देगी, छोड़िए ये अदाए और हमें प्यार कीजिए।

0: फिल्म का नाम 1920। सुमन कल्याणपुर और सुरो का बादशाह, संगीत का फरिश्ता पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सुने हैं कि नाराजगी ये आपकी हमें जीने नहीं देगी, छोड़िए ये अदाएं और हमें प्यार कीजिए।
1: Tot straks na de commercials.
0: सुनते रहना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना, हम आपसे अभी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।

सलाम सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सन 1961 का फिल्म बॉयफ्रेंड से 1961।

मिले जुले संगीत में आपने अभी यह प्रोग्राम में सुने हैं आतिफ असलम की आवाज औलिया, फिल्म का नाम हम चार। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज की कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर स्टेशन है, यू आर उजाला रेडियो और मैं हूं शहीद गुलजार।

लीजिए इस बार प्रोग्राम में अल का याग्निक की आवाज, आंखों में तुमको भरू, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।

0: अरे जन्म अगर तुम साथ हो, हम तो आपके साथ है ना। उजाला रेडियो आपके साथ है हमेशा। आप जहां पर से भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। फोन का नंबर आप नोट कर लेना, 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टर्डम शहर में 020-409-0807 पर। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujjala Radio. Hey, tu jaane hai toh?
1: Oh God, one more remix.
0: Oh, what happened? Oh God. Neha Kakkar, Mika Singh aur Sanu Da ki awaaz. Film ka naam Simba.

0: Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toch? Toch?
1: मिले जुले संगीत में आइए अब सुनते हैं एक बार फिर से फिल्म का नाम हम चार, मोहित चौहान की आवाज़।

द रॉकिंग एंड सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो के जरिए पेश की गई है राहत फतेह अली खान और असीस कौर की आवाज में। फिल्म का नाम है सिम्बा। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम तमाशा, मीका सिंह की आवाज। हीर तो बड़ी सैद है,

मीका सिंह की आवाज के हीर तो बड़ी सैद है। Rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम आपकी मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं स्टूडियो एम्स्टर्डम से। आप हर एक सुनने वालों को एक शुभ दिन मुबारक दिनर्स है। आपकी खिदमत में हाजिर है शहीद गुलजार और हमारे बाद में और कौन कौन आपके सेवा करने वाले हैं। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

नगमों की दुनिया में आइए मिलकर सुनते हैं फिल्म विदेश का सिलेक्शन, सुर कबाचा रफी साहब की आवाज, दिल मेरा जहां टकराया लंदन वाली से।

0: time for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best.
5: The best.
1: फिल्म लव यात्री से आइए सुनते हैं तेरा हुआ। वंस अगेन प्रोग्राम में आतिफ असलम की आवाज़।

धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। आतिफ असलम की आवाज, लव यात्री फिल्म का नाम, 2018 का फिल्म, 2018। मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स में और भी अच्छे अच्छे सेलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं, जैसे कि एक गोल्डन ओल्डी नगमा, हरे रामा हरे कृष्णा नामक फिल्म से, दम मारो दम मिट जाए गम, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।

मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आयशा भोसले की आवाज में यू आर उजाला रेडियो के जरिए एक और सिलेक्शन हो जाए तमाशा नामक फिल्म से। इस बार है लकी अली की आवाज, सफरनामा।

लकी अली की आवाज आपने अभी सिलेक्शन सुने हैं सफरनामा. यूआर का फोन का नंबर है रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते. आज नहीं तो कल के लिए आप नोट कर लेना फोन का नंबर. नुल सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप डाल कर सकते हैं 02-409-9807 पर रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या जो भी रेडियो के कार्य के वास्ते आप डाल कर सकते हैं. प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना. एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं और हम आपसे अभी फिर मिलते हैं.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता, अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला पिंडनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

हर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है। पर गड़बड़ घोटाले

झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर

टाटा यहाँ, नमस्ते को कहते हैं टाटा यहाँ। अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा। ये जिसको बुलाएं करें